कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी पवन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए मुखाकत सी।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: राम जन्म की बधाई है, बधाई है। राम जन्म की बधाई।

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराओ रे।
1: मुझे पाल माँ गाड़ी तेज चलाओ रे, चलाओ चलाओ चलाओ रे। काहे दिया घबराओ रे, मोरा काहे दिया घबराओ रे। रुक जाओ रे, जाओ रे, रुक जाओ रे। ओ मुझे पाल माँ अब न सताओ रे।
0: आओ रे, आओ रे, आओ आओ रे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है घटा बरस जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है घटा बरस जा।